0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाउ खुशी बनाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
0: वर्ष पेंट
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: Anima Reliance Life Insurance. Khule Rajiyo.
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
2: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।